0: क्या घर ये घर भी आ गया
1: दौलत।
2: कौन?
0: पता नहीं दारू पी के गाड़ी चला रहा था। मरते मरते बची हूँ मैं।
2: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है। चल चल चल चल चल।